मेरी एक मिनट एक सवाल पे तो बहुत ही रहो तो नहीं तेरे और लड़े होना ये तो बेहद तो तो ईड़ा नूने तुर माय हसे लड़े तो बहुत ही रह परो ना लाई ड्रामा हुसी कोकोसा निन्यां को ना बा फेतो नो माने इहे बी थोड़ी प्रेवेने वियोलेंशिया नूने तुर माय ये तो परो ना लाई ड्रामा इड़े ने नो डेपोस दे ड्रामा मा का इता कंटिन्यू फिला फाली हो मुजिका सो बेतो बहुत ही रहो तो ना फाटिंग स्टे तुंग दे तिता रो ना लाई ड्रामा depois de drama maka ita continuo fila fali ho musica.